FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारम्भ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है।

0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं आचार्य विनोबा भावे के विचार।
3: पुरुष संसार की गाड़ी के 2 पहिए हैं। संसार में सब काम दोनों को मिलकर करने चाहिए। विद्या प्राप्त करनी हो, धर्म का आचरण करना हो, यात्रा करनी हो, गांव का काम करना हो, तो स्त्री और पुरुष मिलकर ही करें। गांव वालों को हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की 5 उंगलियां समान थोड़े ही हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना होता है तब 5 इकट्ठी होकर उठाती हैं। हैं तो 5 लेकिन हजारों काम कर लेती हैं, क्योंकि उनमें एका है। उनमें अगर आपस में झगड़ा चलता तो कुछ काम ही नहीं हो पाता। हमारे यहां कहावत है ना, 5 बोले परमेश्वर। गांव के 5 लोग जब हमराय होकर बोलते हैं तब वो परमेश्वर ही बोलता है, लेकिन 5 में से 3 एक बात कहें और 2 दूसरी बात कहें तो वो परमेश्वर की वाणी नहीं बनती। इसलिए अगर गांव का भला चाहते हैं तो सब मिलजुल कर काम करेंगे। पहले ये बात पक्की कर लीजिए। भगवान का भजन करने का हर एक का तरीका अलग अलग है और हर एक के तरीके में कुछ खूबियां भी हैं। जब ये सब गांव में अपने अपने तरीके से भजन करते हैं और प्रेम से रहते हैं तब बड़ा आनंद आता है। सितार में 7 सुर अलग अलग होते हैं, लेकिन 7 के मिलने पर सुंदर संगीत बन जाता है। एक ही सुर रहता तो उस सितार को सुनने में क्या आनंद आता। हिंदुओं में भी देखो ना, विष्णु की पूजा, शंकर की पूजा, गणपति की पूजा, देवी की पूजा आदि कितने ही देवताओं की पूजा चलती है। लोग कहते हैं ये क्या देवों का बाजार लगा दिया। मैं कहता हूं रुचि अलग अलग है तो बाजार भी होना चाहिए। भोजन में रोज रोटी ही मिलती रहने पर कोई दूसरी चीज खाने की आपको इच्छा होती है या नहीं। उसी तरह अगर अलग अलग नामों से परमेश्वर की पूजा चली तो गांव वालों का उतना ही आनंद बढ़ गया समझो। परमेश्वर के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। किसी के 4 लड़के होते हैं तो 4ों के नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं। वैसे भगवान के एक रूप का नाम है विष्णु और एक का नाम है कृष्ण, तो कोई विष्णु का नाम लेगा कोई कृष्ण का नाम लेगा, उसमें हमारा

0: क्या निकलता है? सारे भक्ति तो एक ही भगवान की करते हैं ना। हर एक अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम लेता है तो हृदय को तसल्ली होती है। हिंदू धर्म कभी किसी को अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहता। गीता में भगवान ने कहा है कि जिसका जो धर्म है वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए हरेक को अच्छा इंसान बनना चाहिए। दया, सत्य और प्रेम, यही सच्चा धर्म है। इंसानियत बढ़ाना, प्रेम रखना, झगड़ों को मिटाना, यही धर्म का कार्य है। कुरान में एक सुंदर प्रसंग है। मोहम्मद पैगंबर एक स्थान पर कहते हैं, आप लोग रोज अपने धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपने धंधों को छोड़कर भगवान की शरण में आइए, उससे आपकी तिजारत भी अच्छी चलेगी। शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पड़ता है। आत्मा के लिए तो 24 घंटे प्रार्थना की जरूरत है। जो वैसी प्रार्थना करते हैं वे महान हैं। उतनी योग्यता जिनमें नहीं है वे दिन का कुछ समय तो प्रार्थना के लिए निकालें और कम से कम हफ्ते में एक दिन तो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाएं। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि प्रार्थना के कारण भी भेद बढ़ जाते हैं। एक पंथ वाले को दूसरे की प्रार्थना के शब्द सहन नहीं होते। जहां अहंकार आया वहां अच्छी चीज भी बिगड़ जाती है। भगवान के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो सब समान, सब शून्य हो जाने चाहिए। वहां कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई श्रीमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। रात में चंद्र, तारे आदि भेद चाहे दिखाई दें, परंतु सूरज निकलने पर सब साफ हो जाते हैं।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आचार्य विनोबा भावे के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो तो पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। ईश्वर हमें हर रोज़ एक नया दिन देते हैं ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो आइए आज सुबह अपने सारे तनाव को छोड़ें और सच्चे मन से भगवान का शुक्रिया अदा करें।

हम सब जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुबह का ये समय सिर्फ हमारे अपने ईश्वर के लिए है। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। बस आंखें बंद कीजिए, भगवान का ध्यान धरिए और अपनी हर चिंता उनके चरणों में सौंप दीजिए। आइए मिलकर करते हैं ईश्वर का वंदन।

संतों ने कहा है कि जो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करता है, ईश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान हमसे कोई धन दौलत या चढ़ावा नहीं मांगते, वो तो बस हमारे मन की पवित्रता देखते हैं। तो आइए आज सुबह की शुरुआत एक साफ मन और भगवान के पावन नाम के साथ करते हैं।

सुबह सुबह जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ईश्वर की भक्ति में वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं और सुनते हैं ये मधुर भजन।

सुबह की इस पावन बेला में सबसे पहला ख्याल उस भगवान उस ईश्वर का आना चाहिए जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। भगवान हमसे कोई दिखावा या बड़ी पूजा नहीं मांगते। ईश्वर तो बस हमारे मन की सच्चाई और श्रद्धा को देखते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं तो जीवन की हर परेशानी दूर होने लगती है। तो आइए

सुल्ताना और साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज की बात। कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 6 जुलाई। आइए डालते हैं एक नजर आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस वो संक्रामक या इन्फेक्शन है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, चाहे वो पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां। ये सब जूनोटिक रोग हैं जो वायरस या बैक्टीरिया के जरिए जानवरों से हमारे शरीर में पहुँचते हैं। अब बात करें इसके इतिहास की, तो वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत 6 जुलाई 1885 की एक ऐतिहासिक घटना से हुई। इसी दिन फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज से संक्रमित एक बच्चे को दुनिया का पहला सफल टीका लगाया था। चिकित्सा विज्ञान की इस क्रांतिकारी कामयाबी को याद करने और दुनिया को जागरूक करने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। आज यानी 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन जयंती है। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी महज एक राजनेता नहीं बल्कि एक प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देकर जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बात है साल 1944 की, जब आज ही के दिन यानी 6 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो पर देश के नाम एक ऐतिहासिक संदेश प्रसारित किया था। इस भाषण के दौरान नेताजी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। भले ही दोनों महान नेताओं के विचार और आज़ादी पाने के रास्ते अलग थे, लेकिन देश की मिट्टी के लिए दोनों का दिल एक साथ धड़कता था। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान के लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के आकांक्षी हैं। साल 1892 में 6 जुलाई के दिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन की संसद का चुनाव जीतकर एक बड़ा इतिहास बनाया था। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। जिस दौर में अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उस कठिन समय में उन्होंने लंदन की सेंट्रल फिंसबरी सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने ब्रिटिश संसद के मंच का इस्तेमाल भारत की गरीबी और भारतीयों के अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए किया था। साथ ही दुनिया को ये भी समझाया था कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत भारत का धन अपने देश ले जा रही है। आज बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर गांव में हुआ था और आज ही के दिन 1986 को दिल्ली में इनका देहांत हुआ। वे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनीतिक और दलितों व वंचितों के अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार थे। भारतीय राजनीति में 30 वर्ष से अधिक समय तक सबसे लंबे समय का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहने का अनूठा रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। देश के विकास में इनका योगदान अतुलनीय रहा। नेहरू जी की पहली सरकार में श्रम मंत्री के रूप में इन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून बनाए, तो वहीं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध

के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक सैन्य जीत भी हासिल की, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ। और आज पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की भी पुण्यतिथि है। इनका जन्म 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और 6 जुलाई 1894 को कानपुर में इनका देहांत हुआ। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में से एक, भारतेंदु युग के अत्यंत प्रभावशाली लेखक, कवि, प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु माना और अपनी अनूठी रचना शैली के कारण वे प्रतीप भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से भी लोकप्रिय हुए। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनका दिया हुआ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देश भर में राष्ट्रवाद और भाषा प्रेम का प्रतीक बना रहा। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया, लेकिन हिंदी खड़ी बोली और भारतीय पत्रकारिता के विकास में इनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, आइए सुनते हैं देशगान।

कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारा आज का विषय है भारतेंदु युग के उन्नायक। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग को नवजागरण का काल माना जाता है और इस युग को अपनी बौद्धिक आभा से आलोकित करने वाले शिखर पुरुष थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। वे केवल एक लेखक या कवि नहीं बल्कि हिंदी खड़ी बोली को करने वाले और जन जन की भाषा बनाने वाले एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक थे। महज 38 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जिस जीवंतता, बेबाकी और अल्हड़पन के साथ साहित्य सृजन किया, उसने हिंदी गद्य को एक नई दिशा और पहचान दी। आज भी जब हिंदी खड़ी बोली के विकास का इतिहास याद किया जाता है तो मिश्र जी का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में चमकता नजर आता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजनाथ गांव में 24 सितंबर 1856 में जन्मे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के भीतर बचपन से ही एक स्वतंत्र और मस्तमौला आत्मा निवास करती थी। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक ख्याति प्राप्त ज्योतिषी थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल समझे और पैतृक व्यवसाय संभाले। पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए कानपुर भेजा, लेकिन मिश्र जी का मन बंद कमरों की पढ़ाई और कुंडली के पन्नों में कभी नहीं रमा। उन्हें तो लोक संस्कृति, कजरी, लावनी और आम जनता के बीच बहती जिंदगी के रंग लुभाते। यही कारण था कि उन्होंने रूढ़िवादी शिक्षा को छोड़कर अपनी अनूठी साहित्यिक राह चुनी। मिश्र जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ तब आया जब वो आधुनिक हिंदी के मसीहा भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। भारतेंदु जी के विचारों और उनकी देशभक्ति ने मिश्र जी को भीतर तक झकझोर दिया। वे भारतेंदु जी को अपना गुरु, मार्गदर्शक और बड़ा भाई मानने लगे। भारतेंदु मंडल के सबसे सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने अपने गुरु की लेखन शैली को इस कदर आत्मसात किया कि समकालीन साहित्यकार उन्हें द्वितीय भारतेंदु कहकर पुकारने लगे। उन्होंने भाषा की कृत्रिमता को तोड़कर उसमें अवधि और कनौजी का एक छोंक लगाया कि हिंदी गद्य पहली बार आम जनता के दिलों के करीब पहुंच सके। साहित्य को समाज सुधार का हथियार बनाते हुए मिश्र जी ने 15 मार्च 1883 को कानपुर से ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। ये केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत और सामाजिक कुरूतियों के खिलाफ एक वैचारिक शंखनाद था। इसके पन्नों पर बाल विवाह, छुआछूत और विदेशी दमन के खिलाफ तीखे प्रहार किए गए थे। देश की बदहाली पर उनका दिल रोता, जिसे उन्होंने भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में पिरोया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने इस पत्र को कभी बंद नहीं होने दिया। यहाँ तक कि चंदा मांगने के लिए वे पत्रिका में बेहद आत्मीय और मजाकिया पंक्तियाँ लिखा करते थे, जिसे सुनकर कोई भी चंदा देने से मना नहीं कर पाता। प्रताप नारायण मिश्र जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका गजब का हास्य व्यंग। जहां दूसरे लेखक केवल गंभीर और दार्शनिक मुद्दों पर लिखते थे, वहीं मिश्र जी ने बात, भौं, मूछ, दांत और धोखा जैसे बेहद साधारण और घरेलू विषयों पर ऐसे लाजवाब निबंध लिखे कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। वो मूछ पर निबंध लिखकर पुरुषों के अहंकार और समाज की खोटी प्रतिष्ठा पर चोट करते तो बात निबंध के जरिए इंसानी जबान की ताकत समझा देती। उनकी शैली इतनी सजीव थी कि पाठक को लगता था कि जैसे लेखक सामने बैठकर उनसे सीधे गप्पे मार रहा हो। देश की दुर्दशा पर तंज कसते हुए और अपनी भाषा के प्रति प्रेम दिखाते हुए उन्होंने जो नारा दिया वो आज भी गूंजता है, जपहूं निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मिश्र जी के काल में आज की तरह सरकारी पुरस्कारों का चलन नहीं था, लेकिन उन्हें तत्कालीन साहित्यिक समाज और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भारतेंदु युग के उन्नायक जैसी सर्वोच्च उपाधि प्रदान की गई। उनके रचना संसार की बात करें तो उन्होंने लगभग 50 कृतियों की रचना की। उनके नाटकों में हट्टी हमीर वीर रस से ओतप्रोत है तो कली कौतुक और ज्वारी खुआरी में समाज के खोखले पन पर करारा व्यंग किया गया है। काव्य के क्षेत्र में

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: प्रेम पुष्पावली और तर्पण उनकी भक्ति और राष्ट्र प्रेम को दिखाती हैं। वे गंभीर से गंभीर राजनीतिक मुद्दों को भी बेहद सरल, चुलबुली और मुहावरेदार भाषा में ढाल देते थे। वे देश के प्रति, देश की प्रगति के लिए हिंदी भाषा के विकास को सबसे महत्वपूर्ण भी मानते थे। 6 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1894 को कानपुर में हिंदी साहित्य का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। वे शारीरिक रूप से भले चले गए, लेकिन हिंदी खड़ी बोली के विकास में उनका योगदान, उनका अल्हड़पन इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां 6-दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमंत्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रीय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाष अनुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिंहः श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु 4 दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा, पञ्जाब, राजस्थानेषु

0: च प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की

0: चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाज में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी विषय पर सामाजिक कार्यकर्ती सुश्री भावना पांडे से गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं दिन में 1:30 पर। खेती की बातें होंगी दिन में 2:30 पर। सुनेगा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे की पूर्व प्रसारित वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा में 5:15 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूकता। 5:45 पर होती है आपसे मुलाकात कार्यक्रम उत्तरायण में। चर्चाएं होंगी बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि, वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण कतुक सार्थक और युवा आत्मनिर्भर कैसे बने विषयों पर। कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में 6:41 पर। ग्राम जगत, हमारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना ये कार्यक्रम 7:00। चर्चाएं होंगी प्राकृतिक खेती का लाभ और फसलों का बीमा कर निश्चिंत रहें विषयों पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज आप सुनेंगे श्री अवधेश कुमार गोस्वामी का राग बसंत मुखारी में गाया ख्याल। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं पूर्वाहन 11:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोकमंजरी आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर। सुनेगा मनोज कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2:00 और शैल स्वर 5:05 पर। गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में 10:05 पर सुनेगा सबरंग। सुगम संगीत दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। इसके अलावा सबरस आप सुनते हैं रात्रि 8:00। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से सुनेगा प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। 10:35 पर सुरबहार। 11:00 सैनिकों के लिए। 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर एक ही फनकार। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत। 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 इंद्रधनुष। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। आईटीबीपी तक पहुंचा रही हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। देहरादून में सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित एमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सेवा, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। एमपैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और उत्तराखंड सरकार भी प्राकृतिक खेती, बागवानी और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता को सशक्त बनाने के साथ साथ मिलेट मिशन को भी प्राथमिकता दे रही है। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को जहां उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि उड़ान कोलेस्ट्रॉल लेवल फेडरेशन की महिलाएं आईटीबीपी को उनकी मांग की 25% ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध करा रही हैं।
1: हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का, वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सीएलएफ द्वारा आपूर्ति की जा रही है और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1,000 से 2,000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है। तो एक अच्छा उनको आजीविका का साधन मिला है। हमारा सीएलएफ जो है अपनी समूह की महिलाओं से या जो अन्य किसान वहाँ पे हैं उनसे सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ कलेक्ट करता है और आईटीबीपी को सप्लाई करता है। इससे हमारे आईटीबीपी वालों को एक अच्छी मतलब सब्जी ताज़ी भी मिलती है और हमारे जो महिलाएँ हैं सीएलएफ से जुड़ी हैं उनको भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।
0: मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने बताया कि अब तक 1,00,000 रुपए से अधिक की सब्जियां आईटीबीपी को भेजी जा चुकी हैं।
2: इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता, तो कई बार

0: ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है, लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक तो सुनिश्चित है, उसको रेट पहले से पता है और कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है।
1: भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम अगले 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के केंद्रीय कैटेगरी और जोनल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 और 26 जुलाई को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उनकी प्रतिलिपि और 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखने की सलाह दी गई है। दस्तावेजों के बिना रैली ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल का पिथौरागढ़ पहुंचने पर पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ढोल दमाऊं की थाप और छोलिया नृत्य ने माहौल और अधिक भव्य बना दिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों से आए 49 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं।
3: टोटल 49 सदस्य इस पहले दल में हैं, जिसमें से 15 हमारी जो हैं वो महिलाएं हैं, और सभी यात्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके। मैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि अत्यंत मंगलकारी ये यात्रा उनके लिए रहेगी।
1: तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड में मिले आत्मीय स्वागत के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए यात्रा को अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण अवसर बताया।
4: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम हरि कृष्ण है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। पीपल एक फर्स्ट बैच में हूँ। मैं और मेरी मदर कैलाश यात्रा में जा रही है, और जब हम यहाँ आए तब हमें कैलाश और उसका जितना कितना महत्व है और क्या मतलब लोगों ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या मीन्स ITBP जो काम कर रही है, आर्मी गवर्नमेंट कह दीजिए, कुमाऊँ मंडल कह दीजिए, वो लोग मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं कि उसको शब्दों में तो आप बयां ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम भूपेश पंत है। बहुत अच्छा लग रहा है जैसा उत्तराखंड में हमारा स्वागत हुआ। मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ में ही मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारीगण।
1: दल की लाइजनिंग अधिकारी वंदना चौधरी ने बताया कि पहले दल में विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं और यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देशभर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। नवाचार मंत्र राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और IIT दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान ने रामनगर में धनगढ़ी पुल के लोकार्पण के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, गढ़वाल और कुमाऊं की राह होगी आसान। दैनिक जागरण ने चंपतराय के विकल्पों की तलाश शुरू, ट्रस्ट की अहम बैठक आज समाचार की सुर्खी बनी है। इस समाचार पर अमर उजाला लिखता है, चढ़ावा चोरी में चंपतराय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला आज, विदाई तय। नवोदय टाइम्स ने इस समाचार पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से लिखा है, दोषियों को सजा के होसबाले के बयान से सहमत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। आईटीबीपी तक पहुंचा रही हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।
1: ए मैया,
0: आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मनोज कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: बलिदान करूं ला, बलिदान करूं
1: ला। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। हमारे आज के कलाकार हैं मनोज कुमार।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनोज कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।
1: मेरा परदेश दईना सच ज्ञाना, मेरा आँखा बाटा

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मनोज कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

मनोज कुमार की गई इसी चाचरी के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
5: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
6: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
7: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
9: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री अवधेश कुमार गोस्वामी का राग बसंत मुखारी में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंकज कुमार चौधरी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता रहेगी। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कालेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्श को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात 9 बजे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेमार जूनियर हमेशा से ब्राजील के प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ सौम्या कांटपाल।

0: कार्यक्रम के आरंभ में आपने आज़ाद फिल्म का ये गीत सुना। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, और पसंद थी हमारे इन सभी श्रोताओं की। हरियाणा अम्बाला से थे राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवारजन। महाराष्ट्र वाशिम से थे विठल सुरोशे, सुषमा और मायरा सुरोशे। इंदिरा बिहार कॉलोनी दिल्ली से थे। डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी रियाज और डॉक्टर बीबी अंसारी जेल रोड बक्सर से, एसडी राज और अरुणा राज। इसी गीत के इंतज़ार में थे विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटके और विनोद खटके। भोपालगढ़ राजस्थान से थे धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा था। ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश सारंगपुर से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू खुशी और लक्ष्मी ने। पंजाब भटिंडा रेलवे कॉलोनी से थे जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। वैष्णवी कॉलोनी सनावत से थे मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अलमाश बानो, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और इसी गीत के इंतज़ार में आज़ाद रोड सनावत से थे बेगम सलमा खत्री, सुमैया खत्री, आयशा बी खत्री, सादिया जकीरा और मोहम्मद साद खत्री।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सत्य पे सत्ता, आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। धनौंदी तिल्लीवारा से हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू। इस गीत को सुनना चाहा है ज्योति नगर राजस्थान से पुखराज और कैलाश ने। छत्तीसगढ़ पलारी बाजार ज़िला बलोदा से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और ओजस्वी वर्मा। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय और नसीम बेगम। भिलाई तीन छत्तीसगढ़ चरोदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज और इनके परिवारजन। दाऊद राय सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं, अनवर साबरी, सन्नू इरम और अमन साबरी। इसी गीत को सुनना चाहा है। तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चंदोला, सुनीता शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। सहारनपुर चंद्रनगर से हैं सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित और साहिल कांगड़ा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक और अपर्णा नामदेव। और फरुखाबाद यूपी से हमारे श्रोता हैं सुरेश चौरसिया, सरोज, सुबोध सलोनी, संजू, पूजा पिंकी, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया।

लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, इमरान अनाज, नवाजिस शेख, दानिश आफरीदी, अमन आफरीदी। मोटकम ऑफिस ज़िला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देव किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुणेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल बुलगेवाली और फाला झा। अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नूर, नमन, गुट कीरत, सिमरत, गुरशब्द राहुल और विजेंद्र कुमार जयजान। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। बठिंडा करणवीर हाउस से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद, सिमरन, अभिजीत और इनके परिवार।

बच्चन, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानुप्रकाश और सुमन। और इसी गीत को सुनना चाहा है खंडवा संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर और अब्दुल रहीम डावर। इसी गीत को सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में बेखुदी फिल्म का ये गीत।

बेखुदी फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म का ये गीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में महेंद्र देवली ने इस गीत को लिखा है और पसंद किया है। खंडवा लकड़ बाज़ार से मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर कौसर, साकिब पवार, अलमाज बानो, छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार ने। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरव और अर्पिता। श्री गंगानगर से हमारे श्रोता हैं प्रेम, मोनिका, मनीष और इनके परिवारजन। जिला सिरसा हरियाणा से हैं सतवीर सिंह बजारनिया, देवेंद्र बजारनिया, राजपाल अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बजारनिया। कासगंद परी महल से हमारे श्रोता हैं आबाद खान, नावेल खान, आफरा, असलम सैफी, इल्मा खान और जाहिद अली। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ बोरसरा से प्रेम कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। कुंडवाली महाराष्ट्र से हैं गंगाधर रामटेके, प्रमोद और प्रदीप और इसी गीत को सुनना चाहा है। लाल माता सुदामा नगर जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़ में सौदागर फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। डाकघर व निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह, जितेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। राजस्थान गांव जाखोत से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया पवन राजे। छत्रपति संभाजीनगर से हैं मंगलेश इंगले, संध्या स्वराज और विराज। यवतमाल महाराष्ट्र से हैं पंजाब राम टेके, यशोधरा और श्रव्या राम टेके। सर्वोदय इंटर कॉलेज जैती अल्मोड़ा से हमारे श्रोता हैं त्रिलोक बिष्ट, हिमांशु पांडे, नवीन गोस्वामी, जमन सजवाले, दीपक जोशी, लक्ष्मनाथ, मोनिका महेंद्र, कार्तिक गुंजन, भूमि रौतेला और इनके परिवार। सलार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नाजमाउद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके ढेर सारे साथी। और पटेल नगर मालूट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप और आरजू जजौरिया।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं शिकार फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का है। पसंद है इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक परी, खुशी और वंदना खर्चे की। इसी गीत को सुनना चाहा है कुवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज और गुरनूर सिंह ने। औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार गोटके, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश गोटके। सनावत एमपी से हमारे श्रोता हैं अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और इनके परिवारजन। महाराष्ट्र से हमारे श्रोता दीपक कुरहाड़े, आशीष, कल्पना कुरहाड़े, वंदना और इनके ढेर सारे साथी। इस गीत के इंतज़ार में एटा से हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल अनम, रसीद वारसरी और अशरफ अब्बासी। सुरेवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, सुहम, प्रांजलि और ताराबाई बोरगांवकर। बिहार बेनीपट्टी मधुबनी से हमारे श्रोता अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या, निवेश और नियति कुमारी। इसी गीत को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा ने। अनारकली बाजार जगराव से हैं दीपक मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, बेबी गव्या।

सुच्चा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। और इसी गीत के इंतज़ार में लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा कुमारी, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार।

गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे और मातेराव पांचाल, सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दम्माणी, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद, वीणा और विविधा वंडलकर, बुलंदशहर चौखुनट्टी से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवारजन, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी कुश्ती पटवा, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा विगलानी, विवान और इनके परिवारजन, जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, जगुताई, साक्षिताई, वंचित बयाल, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली, सानवी देशमुख और इनका पूरा परिवार, पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंदसौलिया और इनके परिवारजन, और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। तो आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं सुरेश वाटकर और आशा भोंसले की आवाज़ों में परिंदा फिल्म का ये गीत। खुर्शीद लाहौरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

परिंदा फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शहीद फिल्म का गीत। गीत और संगीत है प्रेम धवन का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की हैं। गांव नाथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी, सिया जाधव, भवानी नगर पैठण से अरुण धोगड़े, भाऊ साहिब आरती और सुनंदा धोगड़े, रामपुर से हमारे श्रोता हैं सईद भाई मंसूरी, राशिद, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान, असफर अली और नगमा नाज, परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश प्रगेश और प्रीतेश संघई। श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा है जगत सिंहभुर ओडिशा से, प्रमोद कुमार साहू, कविता सुबलक्ष्मी और शुभश्री साहू ने, और सीता मंडी, नाज मंजिल महसौल से हमारे श्रोता हैं, अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, ममता रानी, पूनम कुमारी, अरहान, हमज़ा, शाजिया शाहीन, नाजिया नूर और इनके परिवारजन। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर शहीद फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के समापन में आइए आपको सुनवाते हैं सत्या फिल्म का गीत, हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। शादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल और भारती बघेल। कोपर गांव से हैं सुरेश और वर्षा, अनमोल शारदा ये भी यहीं से हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और इनके ढेर सारे साथी। गंजू डुंडवारा से हैं शमशुल कामराही, शाहीन फातिमा अतना।

खान, खान फैजान, अनु खान, उस्मान और कलीम अंसारी कुरावली जैन मंदिर से हैं। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, आसमा और मोहम्मद कैफ अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 5 कूड़ी हाउसिंग बोल्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश कुमार चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। श्रोताओं, आदर्श नगर मालोट पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा ने। श्री वडनेर महाराष्ट्र से हैं बलदेव दामोदर, अरुणा अनामिका, गजानन, नवदीप और विश्वदीप।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात आप सभी के फरमाइशी नगमों और खतों के साथ। तब तक के लिए सौम्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गजल। फनकार हैं भूपेंद्र सिंह।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: बागेश्वर जिले में बीती रात से हो रही बारिश का जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। भारी वर्षा के कारण जिले के 14 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रशासन बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 5 बजे तक बागेश्वर में 42 मिलीमीटर, गरुड़ में 13 मिलीमीटर तथा कपकोट में 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिले में औसत बारिश 40.67 मिलीमीटर रही। लगातार बारिश के चलते सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ा है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आज जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों के किनारे न जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बीती देर रात भारी बारिश के चलते मलबा आने से भनीर पानी और गुलाब कोठी में अवरुद्ध हो गया था, जिसे आज सुबह खोल दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। नवाचार मंत्र राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और IIT दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। देहरादून में सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित एमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सेवा, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। एमपैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और उत्तराखंड सरकार भी प्राकृतिक खेती, बागवानी और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। देहरादून जिले के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित ITBP के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को जहां उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं ITBP को उनकी मांग का 25% ऑर्गेनिक सब्जियों को सप्लाई कर रही हैं। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम अगले 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के केंद्रीय कैटेगरी और जोनल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 और 26 जुलाई को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के अभिलेखों का भी परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उनकी 3 प्रतिलिपि और 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह

दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी का एक आईना भी होती हैं। भले ही आज बाहर हर तरफ ठंडी हवाएं और बारिश का माहौल है, लेकिन दिलों में जो पहली मोहब्बत का मौसम होता है ना, वो बारों मास संगीतमय रहता है। कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने में एक नया एहसास दे जाती हैं। आज के इस सफ़र में मैं आपको लेकर चलूंगी साल 2017 की एक ऐसी ही कहानी पर, जिसमें प्यार भी है, सपने भी हैं और दिलों की तकरार भी। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपका दिल भी कहेगा कि एक बार इस फिल्म को तो ज़रूर देखें। मैं बात कर

को लेकर चलूंगी साल 2017 की एक ऐसी ही कहानी पर जिसमें प्यार भी है, सपने भी हैं और दिलों की तकरार भी। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपका दिल भी कहेगा कि एक बार इस फिल्म को तो ज़रूर देखें। मैं बात कर रही हूँ फिल्म शादी में ज़रूर आना की। तो दोस्तों, जैसे फिल्म का नाम ही है शादी में ज़रूर आना, तो चलिए हम भी चलते हैं इस शादी में और बनते हैं इस प्यारे से सफ़र का हिस्सा।

कानपुर के दो आम परिवारों के दो मासूम चेहरे सत्तू और आरती एक अरेंज मैरिज के बहाने दोनों मिलते हैं। शुरुआत आम बातों से ही होती है, लेकिन कब बातें जज्बात बन जाती हैं और कब एक दूसरे की आदत हो जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। वो जो पहली मोहब्बत का नशा होता है ना, जहाँ दुनिया का हर रास्ता एक दूसरे की ही तरफ जाता दिखता है, वही प्यारी सी कशिश इन दोनों के बीच पनपती है। जब हम किसी से सच में मोहब्बत करते हैं तो हमारा हर दिन उनकी मुस्कुराहट से ही शुरू होता है। इसी मासूम मोहब्बत को महसूस कीजिए अरिजीत सिंह की जादुई आवाज़ में, जो सीधा रूह को छू जाती है।

आरती अपने सपनों को चुनती है और मंडप छोड़कर भाग जाती है। सत्तू का दिल टूट जाता है, और जब एक सच्चा प्यार करने वाले का दिल टूटता है ना, तो उसकी आह पूरे आसमान को हिला देती है। वो रिश्ता जो कल तक मुकम्मल लग रहा था, एक पल भर में सवाल बन जाता है। और इसी दुख, बेचैनी और टूटे हुए रिश्ते के दर्द को बयां करता हमारा अगला गीत यासिर देसाई की ऐसी आवाज़ में जो आँखों में आंसू ला देता है। तो सुनिए ये गीत।

मैं हूँ साथ तेरे, ये कहना जितना आसान है निभाना शायद उतना ही मुश्किल, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कहानी में भी एक ऐसी घड़ी आती है जो किसी का भी दिल छलनी कर सकती है। शादी की रात है, शहनाइयाँ बज रही हैं, लेकिन उसी वक्त आरती के पास खबर आती है कि उसका सिलेक्शन PCS ऑफिसर के रूप में हो गया है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ एक आत्मनिर्भर महिला बनने का सपना है और दूसरी तरफ एक टूटे हुए दिल की।

दोस्तों, जो आशिक कभी टूट कर बिखर गया था, अब वो निखर जाता है। सत्तू अपने तकलीफ को अपनी ताकत बना देता है और कठिन परिश्रम करके बन जाता है एक कड़क आईएएस ऑफिसर, सत्येंद्र मिश्रा। फिर नियति एक ऐसा खेल खेलती है कि वही आरती झूठे आरोप में घिर जाती है और उसकी जांच का जिम्मा मिलता है सत्येंद्र मिश्रा को। अब सत्तू की आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं, बल्कि एक आक्रोश है, एक बदला है। जब उसका सामना होता है आरती से, तो उसकी बातों में उसे एक चुभन सी होती है जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिन्होंने कभी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत की हो। अगला गीत हमें सिखाता है कि ठोकर खाकर यूं ही बैठ जाना नहीं है, बल्कि जमाने को अपनी किस्मत बदल कर दिखाना है। आइए सुनते हैं ये आइकॉनिक और जोश से भरा गीत।

दोस्तों, बदले की आग चाहे कितनी भी तेज हो, सच्चे प्यार के आगे ठंडी हो ही जाती है। सत्येंद्र को आभास होता है कि आरती बेगुनाह है और आरती की आंखों में अपने सपनों से भी ज़्यादा सत्तु के लिए इज्जत और प्यार है। दोनों की गलतफहमियां दूर होती हैं और आखिरकार दोनों का पवित्र विवाह भी संपन्न होता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी में करियर और सपने जितने ज़रूरी हैं, आपस का विश्वास और एक दूसरे का साथ रिश्तों के लिए उससे भी ज़्यादा अनमोल है। प्यार बदले का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और समझाने का नाम है। आशा करती हूँ आज की ये दास्तां आप सभी के दिलों को छू गई होगी और आपका मन भी इस फिल्म को एक बार फिर से देखने का कर रहा होगा। जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ बनारस की गलियों की मिट्टी जैसी सुगंध लिए इस बेहद सुरीले गीत के साथ।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए सौम्या कांडपाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने फूल बने अंगारे फिल्म से सुना। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी। अब हम आपको सुना रहे हैं सात खून माफ फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज। विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

सात खून माफ फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए पेश है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान का गाया, समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया 36 चाइनाटाउन फिल्म का गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए आप सुनते हैं अरिजीत सिंह का गाया 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का गीत। जुनैद वासी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है चिरंतन भट्ट ने।

सैनिक भाइयों, अभी आपने उदित नारायण और जसविंदर नरोला की आवाज़ों में अब लौट चलें फिल्म का गीत सुना। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से संवारा था नदीम शवर ने। आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं आशिक फिल्म के गीत से। गायक कलाकार हैं रूपमा राठौर और अलका याग्निक। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है संजीव दर्शन ने।

रूप कुमार राठौर और अलका याग्निक के गाए आशिक फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रश्मि चौधरी का राग मियाँ की तोड़ी में गाया ख्याल, विलंबित लय और द्रुत लय एक ताल में निबद्ध हैं।